0: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग.
1: एपिसोड 80. नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मनभावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो. दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे आसपास कितने सारे लोग हैं. हमारे दोस्तों की लिस्ट बहुत लंबी है. सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स हैं और बाजारों में इंसान का हुजूम उमड़ा रहता है. चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है. लेकिन क्या कभी आपने गहराई से सोचा है कि इस भारी भीड़ में ऐसे कितने लोग हैं जो वाकई समझदार हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के सही और गलत का अंतर समझते हैं. कबीर साहब आज इसी भीड़ का असली चेहरा हमारे सामने ला रहे हैं. वे कह रहे हैं कि इंसानों के जिस्म बटोर लेने से या सिर गिनने से या उनको केवल देख लेने से समाज समझदार नहीं हो जाता. आज का दोहा हमें भीड़ और विवेक के बीच का फर्क समझाएगा. आइए सुनते हैं कबीर साहब की खरी खरी वाणी. कबीर, इस संसार में घने मनीष मतिहीन, हेरत हेरत हेरी गया कबीर भई मतिलीन.

0: श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं, कबीर इस संसार में घने मनीष मतिहीन, इस दुनिया में ऐसे मनुष्यों की संख्या बहुत घनी है, यानी बहुत ज़्यादा है जो मतिहीन है। मतिहीन का मतलब यहाँ सिर्फ अनपढ़ होना नहीं, बल्कि उसका अर्थ है विवेक से खाली होना, समझदारी और करुणा से दूर होना। ऐसे लोग जो बिना सोचे समझे भीड़ के पीछे भागते हैं। अगली पंक्ति में कबीर अपनी खोज का नतीजा बताते हैं। हेरत हेरत हेरी गया, मैं पूरी दुनिया में ऐसे लोगों को हेरता रहा, यानी ढूंढता रहा जो वाकई मतिमान हो, गतिमान हो, बुद्धिमान हो, जिसके पास आत्मज्ञान हो। ढूंढते ढूंढते मेरी उम्र गुजर गई और अंत में क्या हुआ। कबीर भई मतिलीन, कबीर कहते हैं कि दूसरों को ढूंढते ढूंढते मेरा अपना मन और मेरी अपनी बुद्धि उस परमात्मा के ध्यान में लीन हो गई। मुझे बाहर तो कोई बिरला ही मिला, पर भीतर जाने पर वह सच्चा ज्ञान मिला। इसे ऐसे समझिए कि जैसे हंस मोतियों की तलाश में पूरे तालाब को छान मारता है, पर वहाँ उसे सिर्फ कंकड़ पत्थर ही मिलते हैं, क्योंकि मोती हर तालाब में नहीं मिलते। उसके लिए आपको मानसरोवर में ही जाना पड़ेगा। कबीर कह रहे हैं कि दुनिया की भीड़ में समझदार इंसानों को ढूंढना वैसा ही है जैसे कि मोतियों को ढूंढना। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा इस बात पर विचार कीजिए कि हम किस भीड़ का हिस्सा हैं। क्या हम भी बिना सोचे समझे वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं? जब हम बिना विवेक के जीते हैं तो हम सिर्फ एक संख्या बनकर रह जाते हैं। आज कोशिश कीजिए भीड़ से अलग होकर अपनी मति, अपनी बुद्धि को जगाने की। कबीर होने का मतलब यह भी है कि आप दुनिया की देखा देखी गलत रास्ते पर ना चलें। अपनी समझ को साफ रखिए, नेक काम कीजिए, और अगर बाहर कोई समझदार ना मिले तो खुद के भीतर झांक कर देखिए। वहाँ जो समझ पैदा होगी वह आपको कभी भटकने नहीं देगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: आजवर हजारों विद्यार्थ्यांचे यशस्वी करिअर घडवणारे 100% ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट असिस्टन्स करणारे उत्तर महाराष्ट्रातील बेस्ट इन्स्टिट्यूट अवॉर्डने सन्मानित कॉलेज केसेस ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च, जे आहे विद्यार्थ्यांचे उज्ज्वल भविष्य घडवणारे प्लॅटफॉर्म।
2: अशा या उज्ज्वल भविष्य देणाऱ्या कॉलेज मध्ये प्रवेश सुरू आहे। MBA, MCA सारखे PG कोर्सेस, तसेच BBA, BMS, BCA सारखे UG कोर्सेस, सोबतच MCA इंटिग्रेटेड प्रोग्राम, अशा अनेक डिमांडिंग कोर्सेस साठी तेव्हा आजच प्रवेश घ्या आणि आपले फ्युचर सिक्युअर व ब्राइट करा। विजिट करा नेक ए ग्रेड एंड MBA फॉर MBA प्रोग्राम, इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च, जिल्हा उद्योग केंद्रामागे, जळगाव।

0: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग.
1: एपिसोड 80. नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मनभावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो. दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे आसपास कितने सारे लोग हैं. हमारे दोस्तों की लिस्ट बहुत लंबी है. सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स हैं और बाजारों में इंसान का हुजूम उमड़ा रहता है. चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है. लेकिन क्या कभी आपने गहराई से सोचा है कि इस भारी भीड़ में ऐसे कितने लोग हैं जो वाकई समझदार हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के सही और गलत का अंतर समझते हैं. कबीर साहब आज इसी भीड़ का असली चेहरा हमारे सामने ला रहे हैं. वे कह रहे हैं कि इंसानों के जिस्म बटोर लेने से या सिर गिनने से या उनको केवल देख लेने से समाज समझदार नहीं हो जाता. आज का दोहा हमें भीड़ और विवेक के बीच का फर्क समझाएगा. आइए सुनते हैं कबीर साहब की खरी खरी वाणी. कबीर, इस संसार में घने मनीष मतिहीन, हेरत हेरत हेरी गया कबीर भई मतिलीन.

0: श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं, कबीर इस संसार में घने मनीष मतिहीन, इस दुनिया में ऐसे मनुष्यों की संख्या बहुत घनी है, यानी बहुत ज़्यादा है जो मतिहीन है। मतिहीन का मतलब यहाँ सिर्फ अनपढ़ होना नहीं, बल्कि उसका अर्थ है विवेक से खाली होना, समझदारी और करुणा से दूर होना। ऐसे लोग जो बिना सोचे समझे भीड़ के पीछे भागते हैं। अगली पंक्ति में कबीर अपनी खोज का नतीजा बताते हैं। हेरत हेरत हेरी गया, मैं पूरी दुनिया में ऐसे लोगों को हेरता रहा, यानी ढूंढता रहा जो वाकई मतिमान हो, गतिमान हो, बुद्धिमान हो, जिसके पास आत्मज्ञान हो। ढूंढते ढूंढते मेरी उम्र गुजर गई और अंत में क्या हुआ। कबीर भई मतिलीन, कबीर कहते हैं कि दूसरों को ढूंढते ढूंढते मेरा अपना मन और मेरी अपनी बुद्धि उस परमात्मा के ध्यान में लीन हो गई। मुझे बाहर तो कोई बिरला ही मिला, पर भीतर जाने पर वह सच्चा ज्ञान मिला। इसे ऐसे समझिए कि जैसे हंस मोतियों की तलाश में पूरे तालाब को छान मारता है, पर वहाँ उसे सिर्फ कंकड़ पत्थर ही मिलते हैं, क्योंकि मोती हर तालाब में नहीं मिलते, उसके लिए आपको मानसरोवर में ही जाना पड़ेगा। कबीर कह रहे हैं कि दुनिया की भीड़ में समझदार इंसानों को ढूंढना वैसा ही है जैसे कि मोतियों को ढूंढना। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा इस बात पर विचार कीजिए कि हम किस भीड़ का हिस्सा हैं। क्या हम भी बिना सोचे समझे वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं? जब हम बिना विवेक के जीते हैं तो हम सिर्फ एक संख्या बनकर रह जाते हैं। आज कोशिश कीजिए भीड़ से अलग होकर अपनी मति, अपनी बुद्धि को जगाने की। कबीर होने का मतलब यह भी है कि आप दुनिया की देखा देखी गलत रास्ते पर ना चलें। अपनी समझ को साफ रखिए, नेक काम कीजिए, और अगर बाहर कोई समझदार ना मिले तो खुद के भीतर झांक कर देखिए। वहाँ जो समझ पैदा होगी वह आपको कभी भटकने नहीं देगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: आजवर हजारों विद्यार्थ्यांचे यशस्वी करिअर घडवणारे 100% ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट असिस्टन्स करणारे उत्तर महाराष्ट्रातील बेस्ट इन्स्टिट्यूट अवॉर्डने सन्मानित कॉलेज केसेस ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च, जे आहे विद्यार्थ्यांचे उज्ज्वल भविष्य घडवणारे प्लॅटफॉर्म।
2: अशा या उज्ज्वल भविष्य देणाऱ्या कॉलेज मध्ये प्रवेश सुरू आहे। MBA, MCA सारखे PG कोर्सेस, तसेच BBA, BMS, BCA सारखे UG कोर्सेस, सोबतच MCA इंटिग्रेटेड प्रोग्राम, अशा अनेक डिमांडिंग कोर्सेस साठी तेव्हा आजच प्रवेश घ्या आणि आपले फ्युचर सिक्युअर व ब्राइट करा। विजिट करा नेट ए ग्रेड एंड MBA फॉर MBA प्रोग्राम, इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च, जिल्हा उद्योग केंद्रामागे, जळगाव।